0: साधु के चरण।
1: भगवान रामचंद्र
2: प्रेरणे की चुग्गी पहुंचे हैं। भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा। कुछ आदास आया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला। रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष। नाम जप के नाम दी प्राप्ति, नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन, जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच कि नहीं सकता, गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है, पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी। पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे ते उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम फुहार। कर्म कर महापुरुषां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरुषां दी संगत कीतियां की मिलदा, ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साध जना की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस देंदी है, अज रब तुठा है अज रब रुस गया है, चलो मना उस माता कोल चली। मैं रब नू मनाउण वास्ते रब नू रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताहीं।

मांगो राम ते एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

स्मादरं स्माद लांगे फिर जंत स्माद पौन स्माद पानी स्माद अग्नि खे डिवडानी।

जद गंढी सतवट ए जनेऊ जी का है ना पांडे कत ना ए टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन सो मानस ना निका जो गल चले पाए चौंकर मुल।

जब इश्क निमाज चा नीती या की मंदिर ते की मस्जिदी फिर चीजा की कोई कमी नहीं। हकीकत तो प्यार है, प्यार नहीं तो मंदिर ची घटी उजाड़ का कोई ना, मस्जिद च भी मथे टेकने का कोई ना। हकीकत प्यार तो खुले शाह लिखता है जब इश्क नमाज च गीती क्या मंदिर ते क्या मसीती, फिर जब यार ने आन दीदार दिता यार को वाहे धन। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस अकाल पुरख नु अपना यार के सुन यार हमारे सच्चे यार कहते प्यारे तेरे नाल बहुता प्यार कि पुराना आदमी हो मेरा यार सब तो श्रोमणी प्यार करने वाले धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख यार कहते तो खुदा लिखता है जब यार ने आन दीदार दिता इश्क का सिजदा किया यार सामने आके खड़ो गए फिर होया कि बुले ने कमाल किया कहता है जब यार ने आन दीदार दिता गल दसनी नहीं जड़ी बीती है वो दसण वाली चीज जे कोई दसदा फिरदा है तो गलत बाबा जी बचन करते कई ऐसे लोग मैं तुहानू रब मिला देना मैं रब हां नरमकार बाबा जी बचन करते सन झूठ को जिथे मैं उथे तो रब होता ही नहीं आखो श्री मैं तो बिछोड़ा है क्यों भाई जे तू कहता है तो मैं नरमकार मिला दे मैं नरमकार हजूर कहते सो अजान कहे मैं जाना जरा कहता मैं जानी मेरी बड़ी बिरती लगती कुछ नहीं वो तो अनजान और गुरमत न समझे सो अजान कहे मैं जाना जानन हार नाचाना किसी महात्मा ने बाबा धन सिंह जी महाराज के बेनती की बाबा जी मैं सुनिया तुहानू धन गुरु नानक पातशाह जी ने साक्षात दर्शन होते हैं बाबा जी कह लगे महापुरशो जे हां कहने तो हमे आउंदी है की पता होते ही होंगे आपस जी बारे हां भी तो दुराई पाई है मैं मेरी ने दिती तैन सु मैं मेरी ने सुगुरु इस तरह रात ते दिन का मेल नहीं है इसे तरह मैं ते तू दा मेल जब हम होते मैं भी फिरता है तो तू नहीं आए जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही जिथे तू ना प्रकाश हो जाएगा उथे मैं ही बाबा जी ने उसे पीता की पता होते ही हो महाराज मैनू भी दर्शन कराओ बाबा जी सचखंड में लै गए सामने श्री ग्रंथ साहब का प्रकाश की लोगों पुछो आ गुरु नानक मैनू नहीं दिसता बाबा जी कह लगे पढ़ाई तो बगैर कोई चीज नहीं मिलती आखो जितने तक पढ़ाई ना पढ़ी बच्चा जे पढ़ाई पढ़ेगा तो आलम बनेगा अखा ही है पर हूं इलम बड़ा चंगा लग रहा है तो अपने मास्टर की संगत तो गुरमुख की पढ़ाई पढ़ के असि वो पढ़ते नहीं हाँ नितनेम करते नहीं बाणी नाल जुड़ते नहीं जी मेरू दर्शन बाबा जी ने प्रश्न किया साक्षात गुरु महापुरुष हो पर यह नहीं कहना दर्शन हो मैं ते तू दा मेल और गल दसनी नहीं जड़ी पीती ए दर्शन ही ऐसे ए दर्शन
दर्शन पेखत मैं जीओ, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। अज उन्हां दर्शनां नूं श्रेष्ठ गंगा राम उड़ीकदा पे। केड़े दर्शन? प्यार नाल आखो धन श्री गुरु अमरदास तीजा गुरदास। कद समाएगा मेरे मन दी च, काफी समा हो गया, रात दिन सात संगत दे भांडे जूठे बजी गए। कितना समा हो गया? 6 महीने को तेरी सात संगत ये किसे वेले मर डोलदा है, तो आसरा यही है।

केड़ा अमरदास? ब्राह्मण लिखे अमरदास नहीं, तन श्री गुरु अमरदास पाठ से सोच। हा हा ओ बुढ़ा अमरदास आखो श्री ब्राह्मण नु बड़ा उत्साह है। गंगाराम अज गुरु नु बुढ़ा पिया कहीं इसने तेरी पत रखी अज ये कई वचन कर रहे। गंगाराम फिर गुरु ने हुंडी भेज दी है। हां तो गंगाराम ने मुनीमा वाल इशारा किया, देखो भाई कोई गुरु अमरदास पातशाह जी का साडे नाल लैण देण है। मुनीमा ने सारिया वहीं फरोलियां शुरू कर दी, बड़िया बड़िया वहीं सन फाइल सन फरोल के आखिरकार सिर फेरिया ते क्या सेठ अमरदास का कोई खाता नहीं। फिर वही कह दी जिद अमरदास का खाता नहीं, आखो जिस फाइल के अंदर कारोबार गुरु का खाता नहीं वो तो अधूरा कारोबार। इंसान अधूरा है उसके कारी भी, गुरु पूरा है उसकी बख्शिश। फिर घर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे बड़ी आकड़ नाल गंगे रखी। देखो जी कैसे लोग ना कोई लैण है ना कोई देण, एवे उंडी भेज दी। ब्राह्मण ने कहा गंगा राम गुरु नु भुल गया, माया का पर्दा तेरी मत ते आ गया, दात प्यारी विसरिया दातारा, मैं तेन इन अखां नाल वेखिया कि तू गुरु दे लंगर झूठे पाके पाई जा, अज तू गुरु नु भुल गया। कहने लगा चलो ये तो ठीक है पर गुरु का यह कम थोड़ा भी 500 की उंडी भेज दी, आज देती कल हजार भी भेज देगा, हुण मैं माया जाया नहीं करनी आखो श्री वाहे। पर इस मूर्ख नु पता नहीं सी माया तो वो जाया होती है जिहड़ी दूजे पासे लगी, जिहड़ी गुरु दे रेखे लग जाए वो माया तो सफल हो जाती है। जवाब दे ब्राह्मण वापस आ गए, हजूर देके मथा टेकिया रोह पे। हजूर कहने लगे क्यों भी ब्राह्मण देवता मिल गए 500 रुपया? रो के कहने लगा पातशाह कोई नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? ब्राह्मण कहने लगा महाराज एवं इतनी दूर मेनू भेजे वो तो कहना मेरा गुरु ना लैण देण भी कोई नहीं, कोई खाता नहीं। हजूर कहने लगे गंगाराम कहता है हा महाराज, वो कहना मेरा गुरु ना कोई लैण दे। तो हजूर चौकड़ा मार के बैठे सन, चादर की बुकर मार सज्जा हाथ कटिया दिल्ली वर किया, मुठ मीट के जेब पा ली ते कहन लगे लै भी ब्राह्मण देवता अगे तो गुरु नानक सी शाह ते गंगा राम सी गुमास्त, गुरु नानक दी सी जेब ते गंगा राम कढ़ण वाला सी, गुरु नानक देंदा सी ओ लैंदा सी, पर जे आप पे कहदा मेरा गुरु नाल कोई लैण देण नहीं तो अज तू कोई ना आखो श्री वाहे। कहण दी देरी सी फिर काटे पैने शुरू हो गए आखो श्री वाहे। बटन हेठा करांगे तो लाइट हो जाए, बिजली ऊपर कर दो बल्ब भी लगा है तारा भी लगिया है सब कुछ है पर अंधेरा ही हले। सिंगाओ जितने तक गुरु की बख्शिश का बटन नहीं दबिया जाएगा साड़िया कमाइया ने की पूरी हो पाती। बाबा जी बचन करते सन सिख अपनी कमाई से मान नहीं करना, अपने पुन्ना से मान नहीं करता, अपने जतन से मान नहीं करता, सिख गुरु की बख्शिश से जेड़ी मुक दी सदीव ही रहती। हजूर ने हुक्म किया खजानची 500 रुपया खजाने चो ब्राह्मण न दे। ब्राह्मण 500 रुपया लेके तुर पे कहता जाता है।

सरस उड़ारी आमार की सत्संग रूपी मान सरोवर की आप जी ने धनगुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त की आज पूर्णवासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम ते कितनी रहे सोचेंगे गंगाराम ने कुल की थी और गंगाराम ने तकरी की थी असि रोज कर जाते पर दूजे पासे माया जितनी लग जाए गुरु वाल संकोच कर पर नहीं माया तो वो ही साड़ी है जी चंगे पासे गुरु वाली साईं तुलसीदास जी ने लिखे माया है दो भात की दो चलावे रा एक ले जावे नरक को एक सब शराबा को बाबा च माया ला दो नरका का बुआ खुल गया गुरु दे लिखे ला दो गुरु नरक मिल जाओगे तुसी जिथे तन मन नाल आके जुड़े अपने तनु भी पवित्र दर्शन ते शब्द दीते शब्द गुरु का रूप है बाबा जी वचन कर दे सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसे नू की दे सकदा ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा है मानो शब्द वाला ही इश्क दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा आप शब्द का आदर कराउंदा है ते बाबा जी कहने लगे फिर बख्शिशी गुरु आप ही है तो आप जी समा एक दिन भी दो दिन भी कुछ दिन तू आप निकले गुस्सा अमृत वेले भी आके जुड़ते जिस प्रोग्राम नो कदे बना रहे सन बरफरदार सरदार गुरचरण सिंह जी दीवा हरबंस सरदार करनैल सिंह जी सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे दे प्रबंधन आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बने वेख दम तो बनाए प्रोग्राम साहब दास पहुंच गए मार्ग दे दर ते हाजरियां भर रहे हैं हम बाकी दो ही दिन विच रहे हैं कल तक कुछ सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना फिर नदी नाम से कितने साल 50 साल हो गए कीर्तन कर रहे हैं पहली बारी इस ग्राउंड के दर्शन हुए गुरुखा के दर्शन ताकि पीछे अरे संस्थान आओ जो अगला प्रोग्राम है आप जी का निकनेम है अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है तो प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसी तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको और गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश कर आप जी दे दरों करो गुरसाए हो सिख माई पाई पातशाह आप जी की दिती हुई दात सफल करते हुए शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्तन कौन अरदास कराते हैं आप अपने गुरसिखा दमाइया च बरकत पाओ आप अपने गुरसिखा सिखी जीवन बच्चे बच्चिया चढ़दिया कला

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

सेवक सिख पूजन सब आवै। सतगुरु गरीब नवाज साहिब गुरु रामदास महाराज दा पवित्र वाक है भाई, पूजन सब आवै। सेवक ते सिख गुरु के दरबार अंदर पूजन वास्ते आउंदे ने, किस नूं? पूजन जो कोई हस्ती होएगी ना, जिस नूं पूजन वास्ते आउंदे ने, ते पूजन वास्ते आके उस नूं पूज के अमृत रूप बाणी नूं, उत्तम बाणी नूं गाउंदे ने। सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हर उत्तम बाणी। गरीब नवाज साहब सचे पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ओ वाक सिख संगतां ते सेवकां दे हृदय अंदर वसिया, जो महाराज ने लिखिया सी ते सिख संगत अंदर उजागर कीता सी, भई पूजा अकाल पुरख की, परचा शब्द दा, दीदार खालसे दा। इस वास्ते पूजन योग हस्ती होई अकाल पुरख, पूजा अकाल की, पूजन योग हस्ती है अकाल पुरख। अकाल जिहड़ा काल तो रहत है, जिसने सृष्टि नु जन्म दिता, जिसका नाम अकाल मूर्त है, जिहड़ा अजूनी है, जिहड़ा सह भंग है, जिहड़ा सुते सिद्ध प्रकाश हो जांदा है, ओ मिलदा गुरु दी कृपा नाल। सतगुरु साहिब गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ा पवित्र वाक कहा है, भई ओ गुरु दी कृपा नाल मिलदा है, जूना तो रहत है, जूनिया विच नहीं आउंदा, ओ 84 लाख जून च नहीं आउंदा, जन्म मरण च नहीं आउंदा, ओ जूना तो रहत है। है कौन जी? ओ अकाल मूर्त है। उसका नाम की है जी? उसका नाम है सतनाम, सच्चा नाम। उस तो छुट कोई होर भी ताकत है? ना जी, ओ एक है। ओ अंकार, ओ अंग त्रैकाल विच प्रकाश करन वाला, तिना समया दे अंदर ओ अजागर होन वाला एक अकाल पुरख महाराज है। सब गावे हर हर उत्तम बाणी, उस दी दित्ती होई बाणी नू सब गाउंदे ने। पहला उस दी पूजा करदे ने, पहला उस नू पूजदे ने, फिर पूज के उस दी दित्ती होई बाणी नू गांदे ने। उस दे दित्ते होए जो अकाल की बाणी है, दित्ते होए अल्फाज ने, दित्ते होए पवित्र वाक ने, मिठे वाक ने, उन्हां नू गांदे ने, ते गा गा के विचार करदे ने। सब गावे हर हर उत्तम बाणी। पर गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज साहिब गुरु रामदास महाराज नू सवाल करता सिखा ने, सतगुरु अकाल पुरख दी हस्ती ते वेखण विच नहीं आउंदी, ना असी कदे वेखी है, ते जेड़ी हस्ती असी वेखी नहीं महाराज, उस दी पूजा किवें करिए? महाराज कहंदे ने भी अनुभव द्वारा, अनुभवता दे नाल उस नू पाया जा सकदा, ओ नजर नहीं आउंदा। ते महाराज फिर जो नजर ही नहीं आउंदा ते उस नू वेखिए किस विचों? कहन लगे उस दी बाणी विचों। अकाल पुरख महाराज दे दर्शन बाणी विचों हुंदे ने, रब परमात्मा ईश्वर दे दर्शन बाणी विचों हुंदे ने, क्योंकि बाणी अकाल पुरख दा रूप है, अकाल बाणी दा रूप है।

तन तीर एक तन तीर एक एक तन तीर एक संग बसेरा तन तीर एक संग बसेरा सेज एक।

जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे साबित तुम हर